गुरु नानक नाल तुरे आ ते कुछ गल्लां सतगुरु ने आखी। कहन लगी मरदाने साडे ए बचन याद रखने नी। वो केड़े ने भाई साहब भाई मणि सिंह बंसावली विच ऐसा जिक्र आउंदा। कहन लगे तू हुण साडा साथी साडा भाई बन गए ते मैं संसार विच इस शब्द नू वंडना तेरे जरिए। अज तो बाद रोमां दी बेअदबी नहीं करनी। जी महाराज पिछले राती जागना है। जी महाराज आए गए अभ्यागत की सेवा करनी है। तीन गल्लां सतगुरु ने कही। लो जी भाई मरदाने ने पल्ले बन ली। ख्याल करियो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे नाल भाई मरदाना तुर पे। कह लगे जदों राग भी शब्द पा के गावेगा ना वो तेरिया कुलां तर जाएंगी। बाकी गुरु नानक ने कुलां तार दिती। भाई मरदाना नाम लेवा जेड़ा भी गुरु का कीर्तनिया है। ख्याल करियो कदी भुखा नहीं रहा। कहन वालिया ने लिखण वालिया ने बयान करने वालिया ने बहुत गलत बयान किया है। लो जी उते भुखा प्यासा ते आया रहिंदा सी। कोई गुरु नानक ना रहन वाला भुखा प्यासा रह जाए? बिल्कुल नहीं। हां गुरु नानक का वादा सी मरदाने जिथे भुख लावांगी उथे भुख भी लगेगी, जिथे प्यास लावांगी उथे प्यास भी लगेगी। नाम ही मरदाना जग तारने बहाना सी। देखो जी नाम दा मरदाना जगत दे तारन दा एक बहाना सी। मरदाना कौन सी? सोई मर्द मर्द मरदाना। गल मैं कर रहा जोत दी। वेखो गुरु नानक दी जोत जिन्हें मरदाने दे अंदर जोत नू पहचाने। एक ऐसा मर्द बनाया, एक ऐसा अपना भाई बनाया जिसनू नाल लैके सारे संसार अंदर इस आवाज नू बुलंद कीता। तो आवाज केड़ी है?

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दे तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करियो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कढ़े हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को आ की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हर मंदिर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हर मंदिर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शिया गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु दा दित्ता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बोवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब का रूहानी रूह की खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

0: जागन पिछले पैर गुरसिख दा जीवन है अमृत वेले जाग के इश्नान करे ते अपने मालिक दे चरणा विच जुड़ के जपे श्री
1: वाहिगुरु
0: क्योंकि सब तो पहला अपने ऊपर आप भला करना है मनुख ने नींद का त्याग करना है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी का यह सच का मार्ग सानू यह नहीं दसता कि पहाड़ा दियां कंदरां विच जाके पुठे लटक जाओ तां प्राप्ति होवेगी जां घर बार त्याग दिओ ग्रस्त त्याग दिओ नहीं। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन ऐ गुरु के सिख जे त्याग करना है तां अमृत वेले नींद दा त्याग कर इशनान कर ते अपने मालिक दे चरणां विच जदों जुड़ेगा तां गुरु दे ओ बचन बाणी दे बचन ओ बोल तैनू एडे मिठे लगणगे कि तेरे प्राणा दा आधार बन जाणगे। इसलिए जिन्हां ने ए नाम दा रस पीता है आनंद माणिया ओ ए समां कदे शौंके नहीं बिता सकदे। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वादे जो 3 बजे ठीक कीर्तन आरंभ हो जांदा सी आप तां 12:15 बजे इशनान करके जुड़ जांदे सन गुरु नानक दे चरणां विच। ठीक 3 बजे कीर्तनियां सिंघां ने जे आके कीर्तन आरंभ नहीं कर दिता तां फिर आप शरंदा लैके गुरु साहिब दे चरणां विच जुड़ जाना आप कीर्तन करन लग जाना। कीर्तन की समाप्ति तो उपरांत ताड़ना करनी कीर्तनियां नूं क्यों भाई तू 5 मिनट लेट आया है उस निरंकार की सच्ची दरगाह विच्चों सचखंड विच्चों तेरे 5 मिनट कटे गए हैं दस इहदा देना कौन देवेगा जेडे 5 मिनट तेरे बिना जपण दे एवें बीत गए अमृत वेले दे उहदा कौन मुल चुका सकदा है। विचारी साडा जीवन सारा जीवन सौं के बीत जांदा है सानू कोई ख्याल तक नहीं आउंदा पर जिन्हां नूं श्वासां दी कीमत दा पता है ओ अमृत वेले जाग के फिर जदों आनंद माणदे हन तां उहनां दे रसना तों मुड़ मुड़ ए शब्द निकलदे हन।

अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है वाहे गुरु अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत।

0: कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर। हरी पिछे पिछे फिरदा पे कबीर।
1: कड़ी पौड़ी
0: गुरु जेड़ा है वो सिख नू प्यार कर लगता है।

कबीर साहब अपने घर बैठे सन, किसी ने दरवाजा खड़काया, दरवाजा खोलिया, कौन आया? सिकंदर लोधी बादशाह, एदे सिपाही आए ने।

कबीर साहब जी उठ के तुरन लगे। कबीर साहब दे प्रेमिया ने कहा, कबीर साहब जे बादशाह ने बुलाया फिर खैर नहीं वरतनी, तुसी जान तो इनकार कर दे। पर कबीर साहब ब्रह्म ज्ञानी सन, कहने के भाई ए हुकम ए फुरमान सिकंदर लोधी दा नहीं, ए ता मेरे अकाल पुरख दा। जे सिकंदर लोधी दा फुरमान हुंदा ते मैं इनकार कर देंदा, पर जी अकाल पुरख दा फुरमान है ते मैं किवें इनकार करां। नाले एके आ ते नाले शिपाहियां दे।

सिकंदर लोधी दे दरबार विच पहुंचे। बादशाह सिंघासन ते बैठा है, दरबारी बैठे ने। नाशवान बादशाह समझ के कबीर साहब ने सलाम नहीं कीती। सिकंदर लोधी नूं होर क्रोध चढ़ गया। एक तां निंदका ने पहला कन्न भरे सन। बादशाह कहिंदा, कबीर तू मुसलमान हो के राम दा नाम जपना है, फिर मैं बादशाह तू मैनू सलाम नहीं कीती। ते कबीर साहब फिर की कहंदे ने, बादशाह दे मस्तक वल तकिया ते हंकार दिसिया ते नाले इउं कहिया, को हर समान नहीं राजा। कहन लगे, ए बादशाह तू मेरे हरी दी समान तो है नहीं कि मैं तेनू सलाम करा। ओदी बादशाही जुगो जुग अटल।

0: छिपाई हाली वापस नहीं पहुंची। कबीर साहब पहले ही घर पहुंच गए। कबीर साहब दे श्रद्धालुआ ने बड़ी खुशी मनाई। सारे शहर विच जलूस कढ़िया जा रहे है। कबीर जी कबीर दे राम ने रखिया की। बादशाह नूं पता लगा हाली कबीर मरिया नहीं। फिर सिपाही भेजे ने सिपाहियां ने फड़ लिया। बादशाह कहिंदा ठीक है जे पानी विच नहीं मरिया इनू अग विच साड़ के मार दे। एक बड़ा वड्डा लकड़ां दा ढेर इकट्ठा कीता। कबीर साहब नू लकड़ां दे उत्ते बिठा के उत्ते भी लकड़ां चिणन लग पए ने। चार छफेरे नंगियां तलवारां दा पहर है। ए समझदे ने कि कबीर कोई जादूगर है। कबीर साहब दे प्रेमी रोण लग पए ने पर कबीर साहब अडोल लकड़ां ते बैठे होए अपने श्रद्धालुओं नूं की समझांदे ने।
1: आपे पावक आपे पवना
0: आपे ओ हवा है

शोभन वाली है। सुंदरता का मान, जवानी का मान और अक्सर इस मान दे विच इंसान वो कम भी कर बैठता है जो नहीं करने चाहिए। पावत रली है जवानी दे मान विच, जोवन दे मान विच नचदा टपदा इंसान किसी की परवाह नहीं करता। एदा ए मतलब नहीं कि सोहना रूप नहीं होना चाहिए या जवानी नहीं चाहिए। साहब जी कहते हैं जो सोहना रूप है ते मुबारक है ते जवानी है तेरे ते मुबारक है तेरे।

तू हाथी के सवार हो गए, गहने पा के कीमती वस्त्र पा के सिर ते सोने का छत्र चुला के तू आखे मैं बहुत खुश हो गया, तू भावे समझदार है मैं बहुत खुश हो गया।

मौलवी साहब कह लगे अच्छा तू दस मैं तो एवं सवाल किया बिना मतलब का सवाल पर जे तेरे को जवाब है तो तू दस। बच्चा उठ के कह लगा मौलवी साहब वैसे तो खुदा हर जगह है हर पासे है अगर वो किधरे नहीं तो इंसान के चेते विच नहीं आखो सतनाम सिंह वैसे तो खुदा हर जगह है अगर वो नहीं

एक सहज तारी प्रेम रह राज दा बाड़ पिया कर दे एदा लड़का बाहरों भटकदा आया पिता नूं पाठ करदा धक्किया ते कोल बैठ गया पिता ने पाठ कीता सुनिया

तब पिता ने किया बेटा ओत ज्योति जोत समा गई। पर उन्हां दी जगह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब जोता जगा रहे। ते पुत्र कहन लगा पिता जी मैं फिर आनंदपुर साहब जा।

दिव्या बेटा फिर 100 रुपया धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणा से रख के मेरे वालों मत्था टेकी 500 रुपया अपने वालों भेट करने वास्ते जेब विच पाया धर्मशाला पहुंचे है। अरदास करके ये सारिया संगतां उज्जैन तो आनंदपुर साहब को तुर में उन्हें मन में सोचता जाता गुरु का दरबार कैसा हो गया क्योंकि उसकी बाणी में बड़ा आनंद है। वो गुरु से समाधि ला के बैठा होगा मैं जाके बुलावांगा वो नेता भी नहीं बोलना क्योंकि साधुओं की संगत करता सी जो देखता सी उसी तरह गुरु साहिबां बारे

संगत गुरु दरबार बैठी जिस तरह आप बैठे। कीर्तन की समाप्ति हुई, कुछ संगतां बैठिया रही फिर साहब जी धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज पूछ रहे हैं, तुसी कीर्तन सुने तुहानू कैसा रस आया? हुण जिहड़े ते रोज कीर्तन सुनते सन कहन लगे महाराज सुभा दा रस है, क्योंकि साडा सुभा बन गया है रोज कीर्तन सुनना। कोई कहन लगा कन्ना दा रस है, क्योंकि कन्ना दे नाल कीर्तन सुने। कोई कहिंदा जुबान दा रस है, क्योंकि मूंह दे नाल कीर्तन कीता। ते साहिब जी सहजधारी नूं पुछदे ने, ओ सिखा तू नहीं बोलदा तेनू कैसा रस आया? और इह कहिंदा जे मैं आखा सुभा दा रस है, पहला मैं कदी कीर्तन सुनिया। जे मैं आखा जुबान दा रस है, मैं खादा कुछ नहीं। पर एक गल है, ज्यो ज्यो कीर्तन सुने मन भटके आ नहीं, मन मन दे विच ही टिक गया, आखो सतनाम श्री हो। कहन लगा महाराज ये सिदक ते संतोख दा रस है, आखो सतनाम श्री हो। पानी सुन के

एक महीना सेवा की और एक दिन 100 रुपया पिता वाला और 500 अपने वालों गुरु साहबान पेट करके मत्था टेके यार ते नाले कह लगा महाराज कुछ बख्शिश करो ताकि मैं हूं घर को जाऊं। कड़ा प्रसाद दिता कि सिखा ये अपने पिता को नहीं साडे वालों एक सरबलो का कड़ा दिता जेड़ा कड़ा सी हाथ में बने नाले बचन दिता कि सिख इस कड़े का अदब रखी जो मंगेगा गुरु नानक तैन देवेगा। बड़ा खुश होया खुशी खुशी आनंदपुर साहब को तुरे पर जिस तरह ही आनंदपुर साहब को बाहर आया तो सारा आनंद गुआच गया। आखो सतनाम श्री माया वाली फिर फिर जाग गई जिमें अं कई बार कीर्तन में बैठे होने ये बड़ा आनंद आता जो गुरुद्वारे बाहर निकलते हैं तो यह आनंद भुल जाता है और गल याद आ जाए। इसे तरह आनंदपुर साहब को निकले तो सारा आनंद गवाच गया कह लगा मना बहुत माड़ा गीत है 600 रुपया तो रोड़ के आ गया एकड़ा प्रसाद दिता है गुरु ने जेड़ा पिता घर रोज ही बनाता है एकड़ा दिता है कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा इस कड़े की अपनी कीमत 4 आने नहीं इन्हें मैनू 1000 रुपए कितों दे दे रहे आपको सतनाम श्री गुरु उदास हो गया ते गुरु की निंदा कर

एक महीना सेवा भी की थी। 600 रुपया मैं गुरु नू भेटा किया, गुरु ने मैनू की दिता है एक कड़ा प्रसाद जेड़ा मेरा पिता घर रोज बनाता है, एक कड़ा दिता है लोहे का नाले वचन दिता है। कहते सन जो मंगेगा तेनों मिलेगा, पर ध्यान सिंह तू दस इस

तेना लिखे है सिख सिख का सत वणज सिख सिख का पाओ दगा सिख मम ना करे पानी अन्न पकाओ सिख नु सिख नाल

ऐ सुत ऐ पुत्र ऐडा वड़ा कोर पाप क्यों कीता तू गुरु दा वचन क्यों बेची है। पिता ने समझाया मां ने समझाया पर हुण सामने सोने दी

अपना दुध पियाया ते मैं चाहना तेरे दुध की कीमत चुका दे। मां बड़ी सियाणी सी, कह लगी अच्छा हरी सिंह तू इस लायक हो गए हैं।

जोर देता था। बिस्तरा गिल्ला हो गया, कपड़े गिल्ले हो गए, हरी सिंह की जान खुल गई और नींदर नहीं आते क्योंकि कपड़े गिल्ले। एक सर्दी उठ सकदा नहीं क्योंकि मां नाल वादा कीता है मैं सौवांगा। पासरी मारदा है बिस्तरा गिल्ला, नींदर नहीं आती पर सासंग मां दे फिर मां है। मां पासा मार के लपी पई, अखां बंद पर जागदी। अज मां का मन बड़ा दुखी हो रहा है, अज मेरे पुत्र नो नींदर नहीं आ रही। दिन चढ़िया

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हां कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चे नाल गल बात पंजाबी विच करदे हो ता आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है ता अज तो इस पासे खास ध्यान दियो। बच्चियां पास पंजाबी विच गल बात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तां विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल ता इस समा उनां नूं मिल ही नहीं सकदा। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे ता गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना ता इक पासे रिया, और गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे, अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे। हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे, असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हां। जे कुछ उनताई है ता ध्यान दियो ते ओ पूरी करो। आप जितनिया वध तो वध जवाना बच्चा नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फर्स्ट स्टेप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हां। जदों गुरु नानक देव जी दा प्रकाश होया तां मुगल राज दा समां सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने होए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इस सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगो दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा, फिर लोग सुखिए।